0: विद्रोह अदृष्ट जय कर्मचार उस्तत संपूर्ण
1: स्वाक महला पहला आपे भांडे सा जिना पे पुरन दे एक ने तो समय एक चले रहन चढ़े एक ने हाली पैसन एक उपरन खड़े तेना सारे नानक जिनको नजर करे महला दूजा
0: आपे सज करे आ जाए बिरखे

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु

भूत बन चारि चित छौ न सबै दूत धारी पौन के हारि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बंडैया देत बगुला बिडाल विक ध्यान ठानियत है। जित बड ज्ञानी तिनो जानी पवखानी नाहे अस न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बसैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिश फिरैया दत भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब

कंस को बधैया जा मदूत कहियत है। मूड रूड पीड़त न गूढ़ता को भेद भावे पूजत न ताहे जाके रख रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टा धारी सत्य सच बड़े ब्रह्मचारी ज्ञान।

भूस दी अनेकता निवावत है शीस को कह भय मल्ल जब काटत अनेक दंड सोत न डंडौत अस टांग अथ तीस को कह भय रोगी जो पे डारो रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को शीस पट गत जाके कान में खजूर धस मुंड छट गत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को बचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सौ कह भयो भेड़ जो गसत शीस वृक्षन सो माटी को बचैया बोल पूछ लीज जो कसो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ ना चुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक भाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जोग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बन का बहू सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगा व्यापारी कहूँ दंडधारी हो के लोग ने भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है ना जन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार की दर पुकार पर शीत काल गुंचर उगादहा अनेक ताप कार ही का भयो जो पे कल वत्र लियो गांस बीज चीर चीर चूर टाक उठारन सो मारही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ दंग धार डार डार फांस ढंग मार मार डारही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन गैस ज्ञान को विचार ही ताप के सहत जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए ते जो पे पाये अजाप देव भूतना सदीव तू ही उच्चरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल भो करत है आग में जरत गतराण की बरत गर्भ

करीम सोई रास करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब एक गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज होई मान सब एक पया नेको भ्रमाव है देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

उठ आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूरत अनेक दूर पूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच्छ वच हो सपच उठ जाएंगे। केते नब बीज अच्छ पछ को करेंगे भज, केतक प्रत्यच हो बचाए खाए जाएंगे।

जस तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रूवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार भूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे वेदन लगाए हारे झापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बच

न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न

देह दुखं कहूं और बुद्धि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बाने कहूं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हूं कहूं जोग विद्या तरे तापसी हूं कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जस विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या।

कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं

तास देव हर्ता सनाथ आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात, जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योतबान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम वरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग व्याध, जय रोग शोक नहीं सत्र सात, जय त्रास वास नहीं देह नाश, जय आध अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अच्छा अतुल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई गल्प जोग साधत दुर्।

कई सिमृत शास्त्र चरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पान आहार कई कर्त कोड मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच नहीं तब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अगन होत्र कहूं तीर्थ धर्म कई देश देश भाग हर टंत कई देश देश विद्या बडंत कई कर्त बांध बांधन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सुवरम कई अग्नहोत्र कई देव कर्म कई कर्त वीर विद्या।

जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात वितं जय रचयं छत्री छत्र चितं जय राग न रेख न रोग बणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूप बिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद भुजंग ये देव देव सराद पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न ब्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जम्पह किन्नर जच्छ जुअंग नर नार न पुंसक जाह किए गण

गुण जोग जुगं भुव भंजन गंजन आदि तरंजे वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज मृतंजय पार्न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप अटंड प्रभा जयम पद वेद पुराण।

जय फोकर धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निधि को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रतिम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस।

नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अचिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता।

न तात मात जात है न पाद चिहन भरण है अदेह शेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेग है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान।

है न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न देह है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है। न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है।

परिखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा से तस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विषय किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सतु स्नेह जानिए। सदैव सर्वलोक के

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद ब्रह्मसो धर्म करम प्रवीण। जंत्र मंत्र तंत्र जाको आदि मूर्ख अपार हस्त गेट बिगैवद सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखेर मैं।

देव भेव न जानहि जे मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पावहि न सेव जच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार रहे सेव सकरा मुख चार सर्व सबत अवतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहे हो बिराज राज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैस नंगे बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा काश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गुर के न अधीन सर्व सबत पतार के

हर हर हर थके सब नहीं पाइये तह पा ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायु नह पार।

कारण पतिली कर कहिली तो धारण लिए तो लिए मरते हैं इसलिए वो धर्म करने से तो धर्म करने का नाम है हम जन काम करते हैं मंडा में लोग लोग करने का नाम करते हैं भगवान के बजट लोग करने का मेरे से बात करते हैं क्या है तो श्री मंदगा जी विचार है आज जो बात है ना तो मत करते हैं आज जो दशरा नार मारने के लिए निवार बजट लोग सारा ना ये बटे निवार मन पे हटा दो जो बटे खंड खंड अनकार करते हैं खंड खंड अनकार चला रहे हैं निवार बजट लोग सारे रहे हैं मंदे जय जय श्री मंदगा ಮಾಡ್ತಾರೆ

खंजर तुफंग पुंज करद कृपान पान शक्ति सरोही सैप सांग जम दाल चक्र ढाल गन फाल रिप घाल रिप जंग ठान चमकद चारो ओर।

जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी

चौपई संबत सत्रह सहस भणिजय अर्ध सहस फुंतीन कहिजय पादव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र।